कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई है। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना सब झूठी है, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया है। मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। कहने लगे

यहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के भी राग हैं। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास होगा।

न चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन तुम कहां टांग के रखती हो?

इशारा किया कन्हैया, क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया,

कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की, मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं।

थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, माँ ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम नहीं करूंगा।

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे अश्रुधार बहा रहे हैं, दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया, अभी तक मां कह रही है

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

शाम पिया मोरी रगदे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता रहता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है। तो शब्दों की सुंदरता देखिए।

स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

गा रहे, दो दुखियारी पंछी बिछड़े जा रहे। लिसन टू दिस सॉन्ग ऑफ फेयरवेल एज वी सिंग टुडे। टू अनहैप्पी बर्ड्स आर नाउ गोइंग सेपरेट पाथ्स, फेसिंग द इनेविटेबल। दीज टू बर्ड्स लीव ईच अदर विद टीयर्स इन देयर आईज आफ्टर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम्स। These two individuals journey away in different directions, but the cruel world can never understand their pains. Today, they are reflecting on their happy days of old.